चगरक चीचाचो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलि मल सुलुसुलु मल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगरदुम चगरदुम चिकिचकचो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

गुरुआं पीरां फकीरां योध्यां बहादुरां दी धरती पंजाब। पंजाबी मां दे होनहार रखवाले पुत्तर जो अपने आप नूं नशियां विच बर्बाद कर रहे ने, उन्हां नूं चलमन सिंह टंडे दी कलम मिस पूजा दी जवानी कुछ इउं कह रही है।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अपने ग्रह विखे प्रभात फेरी सजन वास्ते नाम दर्ज कराओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: श्री अकाल जी। बाबा जी साडा भी नाल।
0: हाँ पुत्र, तेरे घर से जरूर आवांगे।

उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, इज्वाले भी हैं, मस्तमय पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं, रहमतें हैं तेरी।

भगवान राम की अभी वो अवस्था है कि चलना सीख रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। मेरा प्रयास है आपको कुछ इस तरह सुनाऊं कि आप उस सुंदर दृश्य की कल्पना

0: Big things are happening at Sunrise Radio.
1: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
0: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
1: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ, ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, Buttershaw, St Paul's AODS, presents Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat at St George's Hall, with performances running from the 27th to the 30th of May. Also in Bradford, The Boy at the Back of the Class is at the Alhambra Theatre, bringing the award-winning stage adaptation to the city across multiple performances. Over in Calderdale, An Evening with Lord Ian Botham comes to the Victoria Theatre in Halifax on the 25th of June, with tickets now on sale. And still in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough in Halifax, showcasing contemporary analogue photography across multiple galleries. In Leeds, major touring productions continue at the Leeds Playhouse, including performances of I, Daniel Blake, running through the end of the month. In Manchester, Bank of Dave the Musical continues at the Lowry in Salford, telling the true story of Burnley businessman Dave Fishwick through music and comedy. Over in East Lancashire, live events continue at Darwin Library Theatre, with comedy, music and theatre performances running across the coming days. And finally, in Milton Keynes, sing-alonger The Greatest Showman is coming to Milton Keynes Theatre, bringing a live, interactive screening experience to audiences. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

छोटी छोटी तकरारों में, रोका टोकी वाले यारों में, छुपे छुपे से इशारों में ही जिंदगी है कहीं।

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-30 दास ब्रेडफोर्ड 7230-30।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, Buttershaw, St Paul's AODS, presents Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat at St George's Hall, with performances running from the 27th to the 30th of May. Also in Bradford, The Boy at the Back of the Class is at the Alhambra Theatre, bringing the award-winning stage adaptation to the city across multiple performances. Over in Calderdale, An Evening with Lord Ian Botham comes to the Victoria Theatre in Halifax on the 25th of June, with tickets now on sale. And still in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough in Halifax, showcasing contemporary analogue photography across multiple galleries. In Leeds, major touring productions continue at the Leeds Playhouse, including performances of I, Daniel Blake, running through the end of the month. In Manchester, Bank of Dave the Musical continues at the Lowry in Salford, telling the true story of Burnley businessman Dave Fishwick through music and comedy. Over in East Lancashire, live events continue at Darwin Library Theatre, with comedy, music and theatre performances running across the coming days. And finally, in Milton Keynes, sing-alonger The Greatest Showman is coming to Milton Keynes Theatre, bringing a live, interactive screening experience to audiences. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नई
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, Buttershaw, St Paul's AODS, presents Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat at St George's Hall, with performances running from the 27th to the 30th of May. Also in Bradford, The Boy at the Back of the Class is at the Alhambra Theatre, bringing the award-winning stage adaptation to the city across multiple performances. Over in Calderdale, An Evening with Lord Ian Botham comes to the Victoria Theatre in Halifax on the 25th of June, with tickets now on sale. And still in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough in Halifax, showcasing contemporary analogue photography across multiple galleries. In Leeds, major touring productions continue at the Leeds Playhouse, including performances of I, Daniel Blake, running through the end of the month. In Manchester, Bank of Dave the Musical continues at the Lowry in Salford, telling the true story of Burnley businessman Dave Fishwick through music and comedy. Over in East Lancashire, live events continue at Darwin Library Theatre, with comedy, music and theatre performances running across the coming days. And finally, in Milton Keynes, sing-alonger The Greatest Showman is coming to Milton Keynes Theatre, bringing a live interactive screening experience to audiences. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274-644-46।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
4: My favourite radio station, Sunrise Radio.
5: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM स्टूडियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। इसके अलावा 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देती है और DAB पे ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं। और बहुत जल्द कुछ दिनों के बाद आप डाबी में भी सुन पाएंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे www.sunriseradio.fm पर दुनिया के कहीं किसी भी मुल्क में बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप हमें सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों, प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद रखता हूं आप हमारा साथ निभाएंगे। मेरा और आपका साथ ठीक 2 बजे तक रहेगा। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो दोस्तों, जरूर साथ दीजिएगा और अगर अपनी पसंद का गीत या फिर किसी गीत के साथ आप नाम जोड़ना चाहते हैं तो जरूर फोन कीजिएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। काफी दोस्त हमें फोन कर रहे थे जब हम यहाँ स्टूडियो में नहीं थे और आप मॉर्निंग राउंड अप न्यूज़ सुन रहे थे, क्योंकि अब जब मैं आया तो मिस कॉलें देखी, तो इन दोस्तों का नाम ज़रूर लेंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हम चलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जानिब और उसके बाद जनाब आप सुनेंगे छोटा सा इवेंट्स डायरी का हिस्सा जो आप जहां कहीं भी हैं आपको मालूमात मिलेगी कि हमारे इस छोटे से शहर ब्रेडफोर्ड में और गिरदोनवा में क्या कुछ हो रहा है। तो ये कमर्शियल के बाद फौरन आप सुनेंगे जो 2 मिनट से भी कम है। उसके बाद दोस्तों आप सुनेंगे हिट ऑफ द आवर और उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

यादें तेरी यादें बहुत ही प्यारा गीत था कमार सानू की मत भरी आवाज में दोस्तों उम्मीद के साथ पेश किया था आप सभी जो हैं इस गीत को एंजॉय करेंगे। अब जनाब हीरा खान साहब फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब और आपकी भी तबीयत कुछ नासाज है हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे जनाब हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं और आपके दोस्तों के नाम गीत भी करते हैं जनाब आने वाला जो गीत है आपके दोस्तों के नाम भी करेंगे। उसके बाद सोनिया बहन आपने बर्मिंघम से फ़ोन किया शुक्रिया फ़ोन करने का आपकी तबीयत भी नासाज है हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत दे। आपने कमार सानू का कोई गाना सुना चाहा ज़रूर आपके लिए प्ले करेंगे थोड़ी देर के बाद और उसके बाद नसरीन साहबा शुक्रिया फ़ोन करने का आपके नाम भी करेंगे और उसके बाद जनाब वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने भी फ़ोन किया शुक्रिया फ़ोन करने का आपके नाम भी गीत करेंगे जनाब। उसके बाद चौधरी फरियाद साहब पाकिस्तान से जनाब आपने भी फ़ोन किया शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का आपके दोस्तों के नाम भी गीत करेंगे ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं जनाब इस गीत की जानेब आप सभी दोस्तों के नाम हीरा खान साहब सोनिया बहन नसरीन साहबा और वाजिद भाई और चौधरी फरियाद साहब और प्यारी बहना सादिया जी आजरा जी आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ें अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए।

0: अभी आप सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे. अब इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं.
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक.
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:46 यानी कि 46 पास्ट 11. तो दोस्तों वक्त जो है बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है. छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद दोस्तों आप एक सदाबहार पुराना गीत सुनेंगे किशोर कुमार और लता जी की प्यारी सी आवाज़ों में, और उसको नज़र करना चाहेंगे जनाब तारिक जुल्फी साहब. फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और आप स्पेशली मलिक साहब इसहाक साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं तो उनके नाम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी और मलिक इसहाक साहब को भी ये गीत पसंद आएगा. और उसके बाद हीरा खान साहब आपके नाम करेंगे, और जनाब वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपके नाम करेंगे, और उसके बाद इसी गीत को मूना जी आपके नाम करेंगे, और इसी गीत को मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम इकमाज मुनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह देता हुमैर बाबर और इफराज के नाम भी करेंगे. तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है. सुनते रहिएगा, और जनाब कमर्शियल के बाद गीत होगा, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है.
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: 24 hours a day. Sunrise Radio.
5: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना लता जी और किशोर कुमार की प्यारी सी आवाजों में। अब दोस्तों चलते हैं, एक प्यारा सा गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए पेश करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके नाम किया जनाब ये गीत।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और दोस्तों प्रेम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रेम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। कोशिश होगी सावर में आपके लिए अच्छे और म्यारी गीत पेश किए जाएं। अगर आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा, हमें बताइएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं दोस्तों अब एक प्यारे से गीत की जानेब जो हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए पेश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे एंजॉय करेंगे। गाहे बगाहे हम ये गीत जो हैं आपके लिए पेश करते रहते हैं, अच्छा लगता है ये गीत। तो सोचा चलिए आज भी काफ़ी दिन हुए हमने प्रोग्राम नहीं किए, तो आज काफ़ी दिनों के बाद आए तो इस गीत को भी काफ़ी दिन हो गए शायद आपको सुने हुए, तो आप दोस्तों को हिट ऑफ द आवर की शक्ल में सुना देते हैं। जब सुनेंगे आपको पता चल जाएगा ये गीत काफ़ी प्ले होता है जनाब हमारे प्रोग्राम में। तो चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, और ये हिट ऑफ द आवर का गीत है मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: सनराइज रेडियो हिट आफ्टर हिट, द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो। सनराइज रेडियो हिट ऑफ द आवर।

0: दोस्तों अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और चलते हैं इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:12, यानी कि 12:12। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद हम जनाब महक तारिक और उजैर तारिक की बर्थडे है उनके लिए बाद में कोई गीत लगाऊंगा, लेकिन कमर्शियल के बाद एक गीत होगा, उसके बाद हम उनके लिए एक बर्थडे पे गाना ज़रूर लगाएंगे और उन्हें विश भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

वाह जी वाह, क्या गीत था। और यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा इस गीत को। और पापा शफीक साहब बहुत शुक्रिया फोन करने का, आपने भी अपने दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहा, तो आने वाला गीत आपके जन्म से दोस्तों के नाम करूंगा। नसरीन साहब इस वक्त आप कुकिंग कर रही हैं जनाब, और साथ में सन्ना रेडियो को भी सुन रही हैं, तो आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा ये गाना। और उसके बाद सहरा जी आप भी इस वक्त कुक किचन में ही लगी हुई हैं, आप भी सुन रही हैं, आपके नाम भी करते हैं। और स्पेशली हम ये गीत नाम करेंगे दो प्यारी हस्तियों के, दूसरे लफ्जों में कहना मुनासिब रहेगा, मेरे भी क्योंकि दोस्त के ग्रैंड चिल्ड्रन है, और इसका मतलब हुआ मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, जनाब महक तारिक और उजहर तारिक की बर्थडे है। और दानू को जनाब बहन भाइयों को बहुत ही हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद हो। मरियम तारिक और उजैर तारिक आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, ये भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, इनसे भी सुनिएगा।

हैप्पी बर्थडे महक तारिक एंड उजैर तारिक, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप हजारों साल जिए और मेरी दुआ है, और साथ में आपको बड़े प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से आपकी जो ग्रांडमा है फरा अदीबा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हैं। आपको आपकी अम्मी मिसबा यूब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हैं। आपकी आंटी हैं रिमशा अयूब, फरवा अयूब, और आपके अंकल हैं यासिर अयूब, और आपकी आंटी हैं सिमरा यासिर, और उसके साथ जनाब जनाब आप जो हैं वो सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ प्यार भी दे रहे हैं। आपको महक तारिक और उजैर तारिक आप को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जनाब क्या कहते हैं कि जनाब बहुत जल्दी मरियम जो है ना, मरियम मरियम आपकी भी बर्थडे आ रही है, और देखा ना, और जो है ना वो मरियम आपका नाम लिखना भूल गए, लेकिन मुझे बेटी का नाम याद था ना, तो मुझे पता है कि मरियम को भी महक तारिक और उजैर तारिक को जनाब सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हैं। और मरियम बेटिया आपकी 15 इस महीने की 15 को सालगिरह है, तो आपकी बर्थडे पे तो हम झूम के धूम के और धूमधाम के साथ आपकी सालगिरह बनाएंगे। फिलहाल तो आज बहुत बहुत प्यार के साथ हैप्पी बर्थडे टू महक तारिक और उजैर तारिक। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, लंबी उम्र अल्लाह ताला आपको दे और किसी का मोहताज ना करे, ये बाबा की दुआ है। तो बहुत शुक्रिया जो आप सुन रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ महक तारिक और उजैर तारिक को बर्थडे पे। तो ये गाना आप बच्चों के लिए

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और ये स्पेशली गीत हमने अपने नन्हे मुन्ने जो है ग्रैंड चिल्ड्रन जनाब महक तारिक और उजैर तारिक की सालगिरह पे लगाया था। लेकिन क्या है कि एक स्पेशल नाम जो है वो हम भूल गए, कैसे भूले ये खुशी में, ये कैसे हो सकता था मैं इतना बड़ा नाम जो है वो साथ में लेना भूल गया। उनकी तरफ से जनाब वो क्या कहते हैं मुबारक देना मैं भूल गया, तो फिर ये तो काम ख़राब हो गया जनाब। जो गाना लगा चुके हम तो फिर जनाब हमें याद आई कि हाय हाय हाय हाय हाय हम इतना बड़ा नाम, इतना प्यारा नाम कैसे भूल गए साथ में लेने का। उमिया हनी अयूब, आपकी तरफ से तो मुबारक दी नहीं मैंने, ओए होए होए होए, बहुत ही काम ख़राब हुआ। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि अब सजा इसकी ये है कि दोबारा हम जो है वो कोई गाना लगाएं महक तारिक के लिए और उजैर तारिक के लिए, क्योंकि हम जो है वो इतना बड़ा नाम जो है उमिया हानी अयूब का नाम तो भूल गए। तो जनाब महक तारिक, उजैर तारिक, आप दोनों को स्पेशली स्पेशली स्पेशली उमिया हनी अयूब की तरफ से आपको सालगिरह की बहुत बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार फिर आपको देते हैं आपकी ग्रैंड माँ जो हैं वो जो हैं के क्या कहते हैं जो ग्रैंड माँ हैं आपकी फरा अदीबा अयूब और आपकी मामा मिसबा अयूब और आपकी अंटी रिमशा अयूब, फरवा अयूब, यासिर आपके अंकल यासिर अयूब, सिमरा आपकी अंटी सिमरा यासिर और उमिया हनिया का नाम तो भूले ना तो उसकी सजा। उमिया हनिया अयूब की तरफ से भी आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो महक तारिक और जनाब उजैर तारिक, आपको सालगिरह की। और मरियम की तरफ से भी स्पेशल आपको सालगिरह की मुबारक बाद हो। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप एक और प्यारा सा जो है महक तारिक और उजैर तारिक आप के नाम स्पेशली जनाब उमिया हनी अयूब की तरफ से आपके लिए जो है सॉन्ग होगा। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद वो प्यारा सा सॉन्ग, सो एंजॉय कीजिएगा।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना। एक बार फिर महक तारिक और रोजैर तारिक, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। और मरियम बेटा खां, वेट टिल 15th व्हेन इज योर बर्थडे, सो आई एम गोना डेडिकेट अ सॉन्ग टू यू दैट डे, आई प्ले योर लवली सॉन्ग। तो चलते हैं जनाब अब अगले गीत की जानिब। तारिक भाई, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का। आपकी जानब से आपके दोस्तों के नाम भी करेंगे और उसके बाद जनाब इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे। इस वक्त काम कर रही हैं काफ़ी फ्रेंड्स हैं। इकरा आप सुनना चाहती हैं नजमा के लिए, इफ़त के लिए, नाजिया के लिए, हमीदा के लिए, रुबीना के लिए, बुशरा के लिए, ताजीम के लिए, जायदा और साइमा के लिए। तो जनाब आपकी जन्म से आपकी सहेलियों के नाम और दीगर तमाम दोस्तों के नाम। अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल से आप फिर फ़ोन कर रहे हैं जनाब, आपका नाम ले लिया, आपके दोस्तों के नाम भी करता हूँ ये गीत। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और इन्जॉय करते हैं। दो प्यार भरी आवाज़ें हैं, तो सुनिएगा इस गीत को।

0: जी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। और दोस्तों, वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी आती होती है। तो किशोर कुमार की आवाज़ में एक सदाबहार पुराना गीत आप दोस्तों के नाम पेश करूंगा, लेकिन पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:48, यानी कि 48 minutes past 12। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा सदाबहार पुराना गीत होगा अब्दुल क्यूम साफ राइजिंग हॉल से। आपके नाम तारिक भाई, आपके नाम अब्दुल क्यूम साफ राइजिंग हॉल से, आपके नाम किया जनाब, और पापा शफीक साहब, और जनाब तारिक जुल्फी साहब, हीरा साहब, और जनाब वाजिद भाई हडर्सफील्ड से, चौधरी फरियाद साहब, और जनाब सफीउल्ला भाई, और महबूब अल्लाही साहब, चौधरी मनी साहब चक्की वाले, चौधरी मुजफ्फर साहब और दीगर दोस्तों के नाम ये प्यारा सा गीत होगा। और स्पेशली ये गीत होगा जनाब, इस वक्त तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, और वहाँ दो और शहजादे बैठे हुए हैं, राजा अंस और बिलावल सदीक साहब, उनके नाम भी करेंगे। सदाबहार पुराना गीत है किशोर कुमार की आवाज़ में, उम्मीद रखता हूँ आप दोस्तों पसंद करोगे। तो चलते हैं, सुनते हैं जनाब कमर्शियल के बाद सदाबहार गीत, उसके बाद मुलाकात होती है।

0: पिछड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: Looking for your dream home in Bradford?
4: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
3: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
4: Bellevue Residences.
3: Luxury, space and style.
4: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

जी दोस्तों, अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में मस्ती भरा गीत सुना और अब एक और मस्ती भरा गीत आ रहा है जनाब सभी सुनने वालों के नाम। ये गाना हमें ले चलेगा जनाब खबरों तक, तो मिलते हैं खबरों के उस पार, सुनते रहिएगा।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आगे हैं। कोई समझ नहीं आई जनाब दो इससे प्रोग्राम के किधर गए। एनीवे वक्त बड़ा तेजी के साथ चलता है और वक्त के साथ हमें चलना पड़ता है। तो दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। कोशिश होगी सावर में भी आपके लिए जाते जाते अच्छे और प्यारे से गीत पेश करूं। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को, बल्कि तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम।
1: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, और इसके साथ ही टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, अभी हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:12, यानी कि 12:01, और इसके साथ ही जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, सुनते रहिएगा। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा जनाब, उसे एंजॉय कीजिएगा, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, सुनते रहिएगा।

0: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अनुदा पडवाल, उदर नारायण और नुसरत फतेह अली खान की आवाजों में। और हमें फ़ोन किया सीमा जी, आपने शुक्रिया फ़ोन करने का। और आने वाला गीत जो है ये, क्योंकि सोनिया बहन काफ़ी देर से बर्मिंघम में इंतज़ार कर रही है, उन्होंने मुझे कहा था कुंवर सानू का गाना मैंने सुनना है, तो मैं सोच रहा था कौन सा लगाऊं, फिर मुझे याद आ गई 3-4 हफ्ते पहले उन्होंने इस गीत की मुझे फरमाइश की थी, एक गीत ऐसा था उसकी फरमाइश की थी, जो गीत मैं अपने प्रोग्राम में प्ले करता रहता हूँ अमूमन, तो मैंने सोचा चलिए उसी गीत को, उनका फेवरेट है वही सुना देते हैं। तो जनाब सीमा जी, आपके नाम भी करेंगे और आपकी जानिब से सिमरन के नाम भी करेंगे, शुक्रिया फ़ोन करने का। उसके बाद आबिद भाई, आपने भी फैक्ट्री से फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आने वाला गीत आप के नाम करते हैं, आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम करते हैं। और साथ में इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं, इकरा जी हैं वो सुनना चाहती हैं, नजमा के लिए, इफ़त के लिए, नादिया के लिए, उम्मीदा, रुबीना, बुशरा के लिए, ताजीम के लिए, जायदा और साइमा के लिए। इसी गीत को प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करेंगे, और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं। और नसरीन साहब, आप भी कुकिंग कर रही हैं जनाब इस वक्त किचन में, आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब वक्त जो है वो हो चुका है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। अनीस दाऊद भाई आपने लेस्टर से फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, प्रोग्राम में शमूलियत का। आपके नाम आने वाला गीत करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप इस गीत को पसंद करेंगे। और आपके साथ साथ इसी गीत को इस वक्त काफ़ी दोस्त काम कर रहे हैं, मलिक इम्तियाज़, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर, इफराज, उनके नाम भी करेंगे। और तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो जनाब चलेंगे अब कमर्शियल की जानेब। और कमर्शियल के बाद जैसा मैंने कहा एक प्यारा सा गीत होगा, सभी सुनने वालों के नाम होगा। हीरा खान साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं तो जनाब आपके नाम ज़रूर करेंगे गीत। तो चले सुनते हैं ये प्यारा सा कमर्शियल। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक अच्छा सा गीत, उसके बाद जनाब आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा कुमार सानू और अलका यज्ञ की आवाजों में। अनीस दाऊद भाई, आपके नाम किया था यह गीत, आपने फिर फोन किया, आपको अच्छा लगा, आपने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं जनाब, आप जो हैं दोस्त जो हैं वो सुनते हैं, प्रोग्राम पसंद करते हैं, तो शुक्रिया आपका करना चाहिए। महबूब अल्लाह साहब शुक्रिया फ़ोन करने का, सैयद अली अमीर शाह जी मचस से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी। इस वक्त कोई गाना नहीं होगा क्योंकि हम सीधे चलेंगे जोहर की अजान सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:45, यानी कि 45 मिनट्स पास्ट वन। इसका मतलब ये हुआ हमारा प्रोग्राम भी जो है इख्तिताम होने तक पहुंचने ही वाला है। तो जनाब अब चलेंगे एक सदाबहार गीत सुनेंगे। कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, कमर्शियल के बाद सदाबहार गीत सुनेंगे। अनीस दाऊद साहब लेस्टर से आपके नाम करेंगे, महबूब अलाई साहब आपके नाम करेंगे, सैयद अली अमीर शाह जी मैनचेस्टर से आपने फ़ोन किया आपके नाम करेंगे, हीरा खान साहब आपके नाम करेंगे, आबिद भाई आपने भी फ़ोन किया था आपके नाम भी करेंगे, अब्दुल कय्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले उनके नाम, तारिक भाई के नाम, पापा शफीक साहब के नाम, और इसी गीत को जनाब सफ़ीउल्लाह भाई, वाजिद भाई एडर्सफील्ड से, और चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, चौधरी मुजफ्फर साहब उनके नाम। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम इन ब्रैडफोर्ड?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा की सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों आज का प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। उम्मीद रखता हूँ आज का प्रोग्राम आप दोस्तों को पसंद आया होगा। मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, ये आखिरी गीत जो प्रोग्राम का है मेरी जन्म से आप तमाम सुनने वालों के नाम। और इसी के साथ ही आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा हमारी जन्म से। खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूं शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूं ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहें और खुशियाँ समेटते रहें। आमीन।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

आपके मनपसंद गीत और आपकी मनपसंद आवाजों पे मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
3: The classic hits. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

मौसम जैसा भी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था, उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं, ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें डीएबी पे सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और इस लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 एफएम पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरडेल के इलाके में और इर्द गिर्द के इलाके में, और आपके जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

रहे हैं सनराइज रेडियो को और शहनाज मंसूर के साथ। तो ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गीत हों आपकी पसंद के मुताबिक हों, लेकिन बास दफ़े हो जाता है कि आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज़ में आपको गीत सुनाए जाए। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरें और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को इंजॉय कर सकें आपके साथ साथ।

0: करने।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
4: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

हाँ जी, आप सुन रहे हैं गीतों भरा प्रोग्राम, खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी। और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं, और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का। तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हमने कदम रखा है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। जी आया खुश आमदीद, वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है। आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से, तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है।

तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आप को मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दालां, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते। जितना भी इसको तराश कर लो मगर, जितना भी इसको तराश कर लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।

और आज की मुलाकात बहुत खूबसूरत रही क्योंकि आप हमारे साथी थे, आप हमारे हमसफर थे और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें, तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274-644-46।
3: Looking ahead over the coming days, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, Buttershaw, St Paul's AODS, presents Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat at St George's Hall, with performances running from the 27th to the 30th of May. Also in Bradford, The Boy at the Back of the Class is at the Alhambra Theatre, bringing the award-winning stage adaptation to the city across multiple performances. Over in Calderdale, An Evening with Lord Ian Botham comes to the Victoria Theatre in Halifax on the 25th of June, with tickets now on sale. And still in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough in Halifax, showcasing contemporary analogue photography across multiple galleries. In Leeds, major touring productions continue at the Leeds Playhouse, including performances of I, Daniel Blake, running through the end of the month. In Manchester, Bank of Dave the Musical continues at the Lowry in Salford, telling the true story of Burnley businessman Dave Fishwick through music and comedy. Over in East Lancashire, live events continue at Darwin Library Theatre, with comedy, music and theatre performances running across the coming days. And finally, in Milton Keynes, sing-alonger The Greatest Showman is coming to Milton Keynes Theatre, bringing a live, interactive screening experience to audiences. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: things are happening at Sunrise Radio.
1: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
0: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
1: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030 दास ब्रैडफोर्ड 723030।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायका तुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुसले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके

0: परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायका तुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुसल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230303।

0: ये क्या है?
1: ये टैटू है।
0: ये तो ओम है।
1: हाँ।
0: ये क्या है?
1: ये
0: तो कान में पहनते हैं।
1: निकाल दूँ?
0: नहीं नहीं, कल ऋतु दीदी को दिखाएंगे।
1: ओके।
0: कान की बाली पेट में पहनती है।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

Yeah. Los Angeles, 12 मई 2000, जहां हम 6 पंटर पहली बार मिले थे। हमने सोचा था कि दुनिया जीत लेंगे, अपनी लग गई।